0: सुन काली, आज राति हामी भाग्नु पर्छ है।
1: मारिहाल्छु नि फेरि।
0: रातिको 2 बजी तिम्रो आमाले कहाँ देख्छिन् त भने।
1: आइनँ